0: चंद्रा चंदनानंद चैया चैया चांगुरे
1: डे डे डे डे ये नडा इधे इधे प्रोमो सॉन्ग डा
2: करेक्ट दाना आना कल्याणों
1: अधिके डे सुंदरत के कल्याण आनालों आगलानालों ये दिन आलों सेलिब्रेशन दांडा इन्हें नम्बले या मेरे ना थिएटर कोंदे पारे लीला कुंजाऊंगे किटे सोले
3: हालों म्यूजिशियंस अडिंगा पा